नेक्स्ट टाइम। क्यों माता है भाई, ऐसा है कि आप या तो यहाँ से आके बैठा दो या वहाँ दे दो, आप दो बैठे हो तो पीछे वो लोग भलाई यूँ देखे फंसा यूँ करें हैं। जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग, सत सत और संग। सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत्संग। सत सत इज द गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, एवरी थिंग्स। सत्संग देन इट इज इट प्लीज कम विथ मी, वी स्टे ऑल टूगेदर, वी ऑल वी टूगेदर लाइक वन, यस देन इट इज ओके। अदरवाइज आधो सीटें लाग जैसे दूध आगे यूँ करें, फिर आगे बड़े बड़े आदमी होता है ना, वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ मैं, उसका कहना जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे, और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हु शुड बी हियर फर्स्ट एंड देन सेकेंड एंड लाइक दिस, देन वी हैव ऑल। तो इस सत सत क्या है, वो सत कहाँ है, वो सत कहाँ से आया है। सत केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, जानवरों का भी है, वो भी आता है तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माई लाइक दिस इवन दैट, देन इट इज सेड यस दिस इज वेरी गुड। सो चाइल्ड इज गोइंग फ्रेंड एंड मदर इज बिहाइंड देयर, ताकि द चिल्ड्रन कैन बी विद मदर वेरी नाइस एंड दैट एंड नॉट गोइंग आउट, देन वॉट हैपन इज समथिंग। सो सत्य वो सत्य होता है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, वही सत्य कहा जा गया है। तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किसी बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ, एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की संग है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा बाप जी का, माधवानंद जी का है भाई, माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो मेरे, तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक

फिफ्थ इज आवर हमारा, तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेयर इट इज वाटर एंड इन वाटर में देयर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chauda hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Haan. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसी के ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where's my country there? When I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So, I will do what I will do. I will do anything now. But he is doing it for me. Yes. First, I have done it. But he said, I told them, but he didn't know. I have done, and what will you do? And so my disciples, that everybody in the whole countries, whole world countries, up they are come and made. So in government, India में कहते हैं कि महेश्वरानंद है, वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है, हुआ है. वैसे ही करना चाहिए. और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो

नहीं, आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोलो आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो, ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना था कि नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो, और मैं रहूँगे तो फिर पड़े रहोगे ही, वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स, दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर, दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के, और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है, दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट फ्रॉम हिज हाउस, फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट, इट वॉज ओनली लाइक दिस, एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है, ही केम टू माई विलेज, टू माई मदर, and here my was staying in my house, and there was one very nice person in Rupavas mein, aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the, but he was no very great standing, very great, wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao, to bab ji ke wo nahi the itna, छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी, एंड वो आते थे देन घर पे आते थे, फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी, अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है, रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे अभी भी है, अच्छा ही है, लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगा हो गया यूँ से भी जगह है, हाँ, लेकिन वो नहीं होगा, वो हो जाएगा, वो अच्छा ही होगा, वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं, तो रूपावास कंट्री इज जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज, वेरी मेनी कंट्रीज, तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास? यस, माई नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड। 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने, लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो, लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक। जब भी मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास, और वो चल रहा है। अब वो छोटे मोटे लोग हैं, उसमें तो कुछ होता ही है ना, और होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही है, अब किसने वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया, उसका वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है कि मैं मनुष्य हूँ, बस अब हम मनुष्य है। तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है, और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाड़ हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना, उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है, और देश में गांव बहुत बढ़िया है, और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है, और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत

horizon. So when someone tells you what is the horizon, where is the horizon, only we can tell answer. The horizon is that far, as far I come close, that element, it goes there further. That's it. So don't think that I will be now by my great, my friend, hello, my dear, oh, my brother, hey, my sister, hey, my father, hey, my ma, or hey, my husband, and hey, my wife. She said, I will not. And I said, no, you are killing, but one day, फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारी वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड Then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavana udai. Ab ke bichare kab mila. Pata kahan milega, kahan jayega. आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टू योर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे वो कहते हैं कि नहीं हरि ओम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट एंड हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरि ओम दीप नारायण भगवान की नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स Oh.

जम विदाउट गुरु कृपा वी हैव नो मुक्ति। ओम ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हु गिव मी जॉय जस्ट लाइक ब्रह्म। Who is statue of knowledge? Who is beyond on duality? Who is just like sky? Who is valley clean? Who is beyond on happiness and sadness? Who I make pranam that guru. Om brahmanandam param sukhadam kevalam gyanam multim dandvatitam gagana sadisham

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय वाह।

0: नानक की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ओम शांति ओम शांति ओम। ओम नमो श्री प्रभु। ओम इज ऑलवेज व्हाट वी नो।
1: ओम ये तो जो poznáme už।
0: ओम नमो

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो
1: शेष्टिकरात
0: कंटिन्यू
1: अपोकरात
0: फाइव टाइम्स मोर
1: ऐसे पेचकरात

भूचरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

0: lose that power. And Vishnu make a trick. First he wanted to snatch the kobolds, the Krishna kobolds. And he disguised himself, the different form of a poor Brahman. And he became a very poor Brahman and he went to the Shankarchud's house. And Shankarchud, oh Shankarchud, look at this, I am so weak, I am so hungry, I would like to ask something, can you please give me something, I am begging you. And Shankarchud is Danava and also spiritual. If one Brahmin, poor Brahmin asks, then can you give me something? So without asking also, that our tradition is Brahmin. Brahmin means who knows the Brahma, who knows the Veda, who is the intellectual person. We love to donate because that dhan, that asset will spread the knowledge to the towards the world. So that's why they donate. Brahman, priest, and then intellectual person. And he arrives on his gate. So he's very adorable and kind and generous demon. And he said, well, I can give you. That's not a problem. That's okay. So, and what would you like to ask? And the poor Brahmin trickfully asks, well, I don't need anything except your Krishna kavach, he said. Oh, Krishna kavach? What you need? Who are you? I thought you are asking some rice or some money or some land. You are asking Krishna kavach. That is my favorite things. He said, well, you already promised that you want to give. If you don't want to give, that's all right. I'm going. You know that. Once you promise and you don't give, what will be the result? And he always wanted to curse or something, obviously. And Shankarchud is scared. Well, all right. I'm going to give you Krishna kavach. And he hand over the Krishna kavach to the Brahman. So his first power was Krishna kavach. That was meditative power from the Brahma. Then the Vishnu snatches it. So that's why when you don't take that ghee from the straight finger, what you do? Squeeze. So in the same way, the Vishnu also did the trick and snatched the Krishna kavach. Shankarchud bahut balshali tha. और उसके पति बता तो पत्नी के धर्म से वो बलशाली हो रहा था लेकिन क्या है उसके साथ साथ कृष्ण कवच था और विष्णु ने क्या किया कि कृष्ण कवच छीनने के लिए क्या किया कि उसने एक गरीब ब्राह्मण के भेष धरा गरीब ब्राह्मण के भेष धरने से उसने शंखचूड के साथ में जाकर क्या है कि भिक्षा मांगा ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही ओम भिक्षाम देही बोल के मांगा जब भिक्षा मांगा तो क्या है कि शंखचूड़ के साथ में तो असंख्य धन था दौलत था सारे था एक वृद्ध ब्राह्मण के लिए देने के लिए क्या नहीं था उसने अच्छा ठीक है मैं देता हूँ बोला तो ब्राह्मण ने बोला चलो संकल्प तो कर लो पहले तो जब जो कोई भी संकल्प करते हैं तो देना ही पड़ता है नहीं तो उसको श्राप लगता है और उसको क्या है श्राप से और पाप लग जाता है तो ब्राह्मण के देने के लिए उसने संकल्प कर लिया संकल्प करने के बाद में उसने मांगा कि क्या चाहिए वृद्ध ब्राह्मण तो उसने बोला कि मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके पास में जो कृष्ण कवच है वही चाहिए तो वो क्या है कि आश्चर्य चकित हो गया अरे ऐसा वृद्ध ब्राह्मण मैंने सोच के संकल्प किया था ये तो झूठे है ये तो जाली है तो वही के भगवान के ये माया के खेल है चलो संकल्प तो कर लिया है अब बोलने के बाद में देना ही पड़ेगा तो उसने क्या है कि दे दिया तो कृष्ण कवच तो वो दानव का आधा बल कृष्ण कवच में था वो निकल गया जय बोलिए श्री भोले बाबा की जय सो नाउ वी विल हैव वन भजन्स एंड वी विल गो अहेड सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वी कीप डूइंग इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट इट्स अ समराइजिंग वी ऑलरेडी फिनिश 5 चैप्टर्स व्हेन वी कम अराइव हियर हरि ओम
1: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय श्री देव पुरुष महादेवा की जय श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय विश्व गुरु महामंडलेश्वर पर श्री

black stone, and inside the stone there is a fossil, an snake, that's an insect fossil, and that is proven. And when she gave up the physical body, and the Gandaki river appeared. The her physical body is Gandaki. That's why if you go to Nepal, the Gandaki river is there. And you can find in the Gandaki river lot of shaligram, the black holy stone. And the, in the, if you break the stone, you can see inside there is a chakra, there is a mark of the insect. So and that's amazing, isn't it? This Puran has been written thousands and thousands of years before. And the Nepal is just discovered. Nepal, how many years? The history is maybe a couple of thousands years. And Gandaki in the naming also, couple of thousands years. But you can see there is a such a practical things. I did myself. I went in Kali Gandaki after reading this book. And I found out many shaligrams. When we break that shaligram, inside there is a chakras. And still you can yourself in your life, you can go and prove yourself. And it is saying that if you take bath in Gandaki, whatever the water is coming from the shaligram, you will have the many, many lives punya. So, आपके लिए क्या है बहुत पुण्य को प्रदायक होगा अगर काली गंडकी में जाके आप स्नान करोगे तो इसलिए this is a wonderful story and proved story, proven story, and not only that saying, not story, not that is only conservative or somebody says in book. You can go and experiment on your own, and or you can find out here as well. So that's why in Nepal the Kali Gandaki there are thousands of pilgrimage goes, and at the that's origination of the Kali Gandaki is Muktinath, and in the Muktinath you can see the still the fire, continuous fire. It's not man made fire, it's a holy fire. You can see there the fire is flaming all the time. It's like a volcano, but it's not volcano because of some the chemical. The fire is coming there continuously, and it is saying the fire of Brahma, Vishnu, Mahesh. And so in the river you can see the shaligram, whatever the shaligram, and wherever in around the world it is supplying now, that is from the Kali Gandaki. And Kali Gandaki is Tulasi's physical body, that is after she lose her that integrity, she lose her patibrata dharma. So that Kali Gandaki river is the body of the Tulasi, and when she get the blessings Tulasi, and from that day Tulasi and Vishnu is together. And Tulasi went to Vaikuntha. And she is worshipping everywhere around the world. You also love Tulasi, isn't it? Basil. The basil hops. In Europe, in America, in Australia, any countries nowadays. The basil have got different species. But if you find the original one, that is a wonderful. And newly invented here, there is in India, there is one research center called National Center of Biological Science that did the experiment. That short form is NCBS. So, and that technology, that laboratory tested, and Tulasi have got such a power, it has got antifungal, antibiotic, or anti-cancer elements in it. That's why it's already hops, popular hops. And later on, that Tulasi is acceptable, and when you die also, the Tulasi is very important. And in everyone's house, there is Tulasi in Hindu's house, in Sanatani's house. And the Tulasi is the continuously it provide you oxygen. Jai boliye Narayan Bhagwan ki. Jai boliye Tulasi Mata ki. Jai namastulasi kalyani namo Vishnu priye suve namo moksha prade devi navasampada pradayike namastulasi devi namo Vishnu priye suve. So it is the beloved ones of Vishnu now. So that's why we salute the Tulasi from that time continuously. She is serving this universe. Many she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some Tulasi seed with you, if you haven't already done this. And Tulasi is the wonderful. It need to go everywhere. And this is for the human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, Tulasi. That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Shaligram.
And Shaligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Shaligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is what is the Shaligram. So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that it's a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Shaligrams. The five Shaligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This is Pancha Devata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five Shaligrams. So everyone can keep in Shaligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free. That Tulasi is oxygen, and that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer. It shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulasi. If you put in tea, there is Tulsi tea as well. If you wear Tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of Tulasi, that removes the bacteria and helps you. The Tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulasi's Mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagavan Ki, Jai. जब शंखचूड़ को जब से शंखचूड़ का बल बहुत बल गया बड़ा था क्योंकि पत्नी व्रत धर्म से तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के उसके बाद में अपति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया पाँव धो लिया घर में लेकर गया खाना दे दिया रात में फिर रतिक्रिया किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रहती है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है तो इस दुनिया में पति व्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी जब इनका पत्नी व्रत धर्म जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा जय बोलिए भगवान नारायण की जय तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है ना तो भाई नहीं तो कोई जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है लेकिन दोनों दुश्मन है तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है अच्छा नहीं है तो ये शत्रु के रहता होता है इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूँ तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है
इसलिए किया है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े। दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है लेकिन मन नहीं हो सकता है। आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया। वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है, अभी सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है। गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहाँ पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

hundreds and thousands years that passed away. So, but Jalandhar was so brave, still he did not defeat it. तो ये पुराण है कि शिव पुराण में जो आता है कि तुलसी माता शालिग्राम में कैसा प्यारी हो गई, तो वही है कि वो शंखचूड़ की पत्नी थी और विष्णु ने छल करके उसको अपने बनाया, उसका पत्नी धर्म नष्ट हो गया और उसने श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में विष्णु भगवान क्या है कि पाषाण बन गए, पाषाण विष्णु क्या है कि वो शालिग्राम में रहने लगे और शालिग्राम में रहने लगे और तुलसी माता भी उनके पास में रहने लगी, वैकुंठ में चली गई। इसलिए आज तक हम क्या तुलसी इस्तेमाल करते हैं, ये शिव पुराण का कहानी है। शिव पुराण का अमृत कथा ये बोलता है कि ये उन तुलसी ने जो शरीर देह त्याग किया था वो गंडकी था, गंडकी अभी नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से बहती है, शालिग्राम वहीं मिलता है। दुनिया में एक ही जगह है कि असली शालिग्राम मिलने का जगह, तो हम जाके खुद अपने जीवन में परीक्षण कर सकते हैं। कोई बनी बनाओ बात नहीं, कोई ये कहने वाला कथा नहीं है कि ये शिव पुराण में जो लिखा है वही अभी भी सत्यचित सत्य को हम क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए शिव पुराण में ये लिखा है, तो दूसरा पुराण में क्या लिखा है इसके बारे में, तो हम तो क्या है कि अभी आधुनिक दुनिया में हर चीज को परीक्षण करके ही लोग क्या है कि समझते हैं, विश्वास में लेते हैं। तो स्वस्थानी में, स्वस्थानी पुराण में क्या लिखा है कि तो वहां पे भी ऐसी कहा कथा है, जालंधर नाम का दानव था बहुत बड़ा, वो क्या करता था संसार को दुख देता था और देवता को बहुत दुख देता था। ऋषि मुनि महात्मा शिवालय सार को क्या था वो तांडव करता था उसमें, तो इसीलिए सब लोग क्या हो गए बहुत दुखी बन गए। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या है बैठक हो गया और बैठक के बाद में उन्होंने क्या किया कि जालंधर के पास में तो पत्नी व्रता धर्म है, पति व्रता धर्म है, जब तक वृंदा के पति व्रता धर्म नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये बहुत बहादुर रहेगा, बहुत सामर्थ्यशाल रहेगा, इसीलिए विष्णु के साथ में जाओ, शिव जी ने बताया। और सारे देवगण विष्णु के पास में गए, विष्णु ने हाँ कह दिया। उसके बाद भी फिर विष्णु ने छल करने के लिए गया। जय बोले विष्णु भगवान की जय। सो एंड देन विष्णु स्टार्टेड टू डिस्गाइज अगेन, दैट इन स्वस्थानी पुराण इट सेज लाइक एंड विष्णु चेंज हिज अपीयरेंस एंड ही लुक्स लाइक एग्जैक्टली द जालंधर एंड ही वेंट एंड वेन द टाइम द वृंदा सो द विष्णु, विष्णु बिकेम व्हाट हैपेंड यू नो, he faint, he lost there. She was so beautiful and that sort of beauty the Vishnu that did not tolerate and he faint there. And Brinda surprised, who is this? If this is my husband, he cannot be faint. He should not be unconscious. He, my husband is used to. And then before coming Brinda, before saying to Brinda, Vishnu disappeared and ran away from there. So, and he was waiting for the second chance. And second chance, then after a long practice, he practiced and he gathered courage and he went to the Brinda's house. And with bravely, oh Brinda, I just arrived, I'm very tired with the Mahadev fight, can you please give me some food, snacks, coffee, tea, whatever he wanted? So he ordered, he asked Brinda. And Brinda said, well, my Swami, come here, I'll offer you my lord, I'm waiting for you, you must be tired, I'll give some good massage, come here. And she gave good fruits and everything, and she did the arati for her husband, and everything done, and that Vishnu did his notorious things, he performs that, and the Brinda, overnight, Brinda finishes her Pativrata Dharma, finishes. And Jalandhar was fighting over there with Mahadev, and Vishnu is in Raslila with Brinda, in the Jalandhar's discuss appearance. And in the morning time, again the Vishnu send message or information to Shiva. Oh, the Shiva, now the project is done. Then you can fight. So, and then Mahadev started to fight. The Danav became very weak and he fell on the earth and died there. And the sound came. The big sound, massive sound came. And that went to the Parvati's, that went to the Brinda's house. And that was his pati. And she saw his husband is dying there and Vishnu is acting there as her husband. So that time she is very unhappy and she started to curse. But the Swastani Puran said that she cursed four cursing. There is not only one. Shiv Puran says that only the Vishnu need to remain as like
the Passard.

you need to remain, you're supposed to remain as a tree in the earth so that you cannot move anywhere else. Because you disguise and tree cannot move. फिर उसके बाद में जब वृंदा को श्राप से क्या हो गया कि स्वस्थानी पुराण में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. शिव पुराण में जो जो बात है वही है, लेकिन स्वस्थानी पुराण में जब वृंदा का जो पतिव्रता धर्म विष्णु ने नष्ट कर दिया उसके बाद में वृंदा ने चार श्राप दे दिया. पहला श्राप था कि ये विष्णु छलकारी तो जाके पत्थर बन के रहना, तो पत्थर बन के रहना पड़े तो उस टाइम से पत्थर शालिग्राम के रूप में रहे. फिर दूसरा श्राप था तेरे को पेड़ बन के रहना पड़े, तो पेड़ बन के रहना पड़े का मतलब कि पीपल बन गए विष्णु जी. और दूसरा तीसरा श्राप था कि आप ग्रास बन के बनना पड़े, तो इसलिए कुश ग्रास भी तुलसी कुश ग्रास भी विष्णु का रूप है, कुश ग्रास बन के बन गए. और ऐसा करके उसने श्राप दिया आप कि झाड़ होकर रहना पड़े, घास होकर रहना पड़े, तो तुलसी बन गए. इसलिए चार श्राप था. तो वृंदा के श्राप से विष्णु भगवान श्राप मोक्ष के लिए पहले से अभी तक को मोक्षता के लिए रहे हैं. तो वृंदा कर्स तो विष्णु फोर कर्सिंग्स देयर. फर्स्ट थिंग इज बेटर यू रिमेन स्टोन, एंड देन सेकेंड ट्री, एंड थर्ड वन इज ग्रास. सो दैट्स व्हाई ग्रास द यू नो द ग्रास इज कुश ग्रास. द ग्रास कुश ग्रास इज ऑल्सो टेकन एज अ विष्णुज इनकार्नेशन. And that's why in prayer, everywhere, we use the kush grass. As we mentioned earlier session is, kush grass is also medicinally, is therapeutically very useful and very wonderful herbs. And similarly, she calls the grass, bush. The bush is tulasi. Tulasi hokar rana pade, kush hokar rana pade, aur people ruk hona pade. Isiliye, is duniya mein people ko, tulasi ko, saligram ko, aur क्या है कि हम जो पीपल को रुख सालिग्राम को तुलसी को कुश ग्रास को विष्णु के रूप पे इस्तेमाल करते हैं. ये आयुर्वेद के हिसाब से स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है, आपको बीमार ठीक कर देता है. और तुलसी खाना में डाल के खाए आपको बात रोग ठीक हो जाता है. तुलसी घर में रखे आपको चट्यांग नहीं आता है आकाश से, और कोई भी विस्मत नहीं आता है, और भूत प्रेत पिशाच नहीं आता है. इसलिए कुश ग्रास चाहे जिसी धर्म का इंसान हो तो वो रखे तो उसके लिए लाभ होगा. तुलसी भी ऐसे करके लाभ होगा. सो फ्रॉम दैट डे विष्णु स्टार्टेड टू मोक्ष के लिए आ गए. एंड देन ही स्टार्टेड टू रिमेन तुलसी पीपल सालिग्राम एंड कुश ग्रास. सो नाउडेज इफ यू हैव टू प्रे विष्णु नॉर्मली यू गो टू एंड वर्शिप एंड इट इज सेइंग विष्णु तुलसी पीपल इज अ इंडिकेटर ऑफ विष्णु. That's why that is the only tree in this universe that gives continuously oxygen. The other tree gives carbon dioxide as well. But people, that continuously. That's why meditation can be successful. The Buddha meditated where? Under the tree of banyan tree, the people tree. So that's why under the, that is easy. Without food also you can take oxygen. And without water, without food, also you can meditate. So the meditation becomes easier under the tree of the banyan tree. And also according to the astrology, if you have the mangalik, if you have that some difficulties in conjugal life, if you suppose to suffer some difficulties in your conjugal life, and there is a provision, you go and marry with the people. So people is Vishnu, and Vishnu will take the responsibility. And that is the because the course of the Vrinda. That's why any difficulties you have got husband and wife, the negativity will, the burden will carry by the people, tree. And you will be free. If you Google that, why people does the banyan tree wedding, that's the mystery. तो इसीलिए क्या है कि वेद पुराण में भी बताया गया है कि पीपल क्या है, सबसे बड़ा सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सर्वकालिक सर्वदेशीय और सर्वप्रिय वृक्ष है. जो वृक्ष आपको सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है. दुनिया में सारे पौधे पेड़ क्या करता है कि रात में और दिन में अलग अलग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन पीपल का पेड़ कंटिन्यूसली आपको ऑक्सीजन हवा देता है. जो हवा मानव जीवन के लिए जीने के लिए अत्यावश्यक जरूरी है. पीपल हैव गॉट द ग्रेट वैल्यू. सो दैट्स व्हाई इन हवन ऑल्सो व्हेन यू डू हवन देयर नीड्स टू बी पीपल्स वुड. People woods, tulsi woods, kush grass, tulsi wood. So when you death also in cemetery, if your body is cemetery cremate with the wood of the people, kush, tulsi, it says like it will be purified your body. And spiritually you will go in heaven, Sivaloka, Vaikuntha. So that's why in the death.

0: this time, many people in India, in other places, they collect some wood, little bit tulasi, little bit that panchapallav is. People मरने के समय में क्या है कि थोड़ी सी भी पीपल के पेड़ लकड़ी और तुलसी की लकड़ी साथ में रख लो और चिता में कोई भी किसी का भी चिता पीपल का लकड़ी से तुलसी का लकड़ी से उसमें कुशकास रख के उसको चिता दहन होता है तो वो वैकुंठ लोक जाता है। तो वो तो स्पिरिचुअली है, इफ यू डोंट बिलीव, अगर आपका विश्वास नहीं है तो क्या है कि जहाँ पे पीपल को जो बॉर्न होने से जो हवा आता है तुलसी से और कुश से, उससे वायुमंडल को साफ रख देता है, वो गंध को दूर कर देता है, इसलिए वायुमंडल का कीटाणु नुकसान कर देता है और ओजन लेयर को भी टाल देता है। इसलिए पीपल के ट्री बहुत अच्छा है, हवन के लिए संविदा बना देता है। जय बोलिए पीपल भगवान की जय। सो दिस इज द वंडरफुल स्टोरी दैट यू कैन एक्सपेरिमेंट इवन you go and if you have the measurement of the oxygen that has been done many times in Australia also did. So if you take that level of oxygen near close to the peepal tree or basil tree, the tulsi ke nazdik jaake check kare, so you will get the high temperature, high level. So that's why always tulsi is beautiful and then peepal is beautiful. So it says no matter whatever story is connected, but that is a wonderful gift from this universe, for the universe. So meditating under the banyan tree and bringing the kush grass in your flower pot and planting the tulasi kush grass is wonderful. That's why our saint and rishi munis, they ate that every prayer you need to have leaf of the tulasi, leaf of the peepal and kush grass. That's a compulsory. So if we don't find, that's okay, but if we have that one, that's a wonderful, perfect prayer. So in the kalas also, that we put that, if you see that in the kalas, there is a 7 leaf. If we don't find the 7, we'll put the 5. So in the 5 leaf, that is also panchapallav. Mango, and peepal, and aak, and chaap. So tulsi, everything goes there. So that's why the leaf is connected with Ayurveda. And therapeutically, which is wonderful. And so that's why when this value goes to the Western world, and there is expensive, in you might came from the Japan, in Australia, and some other country, Canada. Nowadays, the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the that's a tree, the peepal tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye peepal ke rukh mein dhyan karne se, peepal ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prashasan mein aashwasan to yahi hai. Aur peepal ke kya hai? Peepal mein Brahma Vishnu Mahesh ka bhi vaas hai. Isliye peepal ke vriksh ke niche Buddha Bhagwan, jo Nepal mein janma hua tha unka, unhone bhi ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आकर मेडिटेशन किया था। तो इसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में ही उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पृश्य से, उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करें,
1: देन वी गो टू गोच आश्रम मे बी एंड देन वी हैव मोर स्पेस एंड फॉर सत्संग।
2: Let's do live prayer.

नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुहावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाधरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुराज्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्

तं स्वरूपं सुषुतं सदा योगि जप्तं नमो सर्वव्यापी गुणातीत देव प्रभुदीपदि जो सदा चरण सेवा विघ्न हरण मंगल करण धरण परपान पार्वती नंदन नमो श्रीदीप शरण धर ध्यान

गुरु की तीन लोक के नाथ है सतगुरु के आदि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है जो वे सुर नर वाट नुग्रह नीच जाने नही युग युग गे लेटा यतन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान।

श्रम गुरु कृपा। ओम दीप ज्योति पराब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम दीपनम सजते सर्वम संध्या दीपम सर्वसत्यम। ओम नमो प्रभुदीप अविनाशी आपि ब्रह्म आपि विष्णु आपो कैलाश के बाद आपो नारद आपो शारद आपो शेष शुक्रासी आपो ध्यानी आपो ज्ञानी आपो यो प्रकाशी आपो देव सब देवी आपो सूर्य प्रकाशी आपो ब्रह्म निर्वाणी आपो चौर के वासी आपो वेदों के ज्ञाता आपो भक्तुर्वासी।

से। ओम शलभपुर जी महादेव की जय। देवाद देवेश्वर महादेव की जय। सुदीप नारायण भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंदपुर जी सदगुरुदेव भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंदपुर जी गुरुदेव की जय। आज का नंद की जय। सब संत शिवनि महात्माओं की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। अरण पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादि लक्ष्यम एकम अनित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरुतम नमाम्यम।

गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ दीप्ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वमोहनं दीपनं सजते सर्वं संध्या दीपं सर्वसत्यम् ॐ नमो ब्रह्मदीपविनाशी आपि ब्रह्म आपि विष्णु आपो कैलाश

देवी आवो सूर्य प्रकाशसी आवो ब्रह्म निर्वाणी आवो चौर के वासी आवो वेदों के ज्ञाता आवो भक्तुर्वासिनी।

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

शांति शांति शांतिर्भवतु। अलकपुरी जी महादेव की, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, हिंदू धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। Blessed self, dear bhaktas, spiritual seekers, today is the day that we are all together here in our holy ashram.

भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are like doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kya mata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि अरे सोनी भाई बैठ रहे, मैं तो हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने कटे उठाऊँ कभी, आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे तो फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai. Wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है, छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So, child is going front and mother is behind it. Taki, the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something. So, sat, wo satya hota hai. Satya hi sat hai. Satya hi satya hai. Wo is satya kahal ja gaya hai. तो सत संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को किस बक बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गो टू सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग, सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ।
एक भजन लगाओ सत्संग का, सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाथ लगाओ तब बेटा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई। माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और महाप्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए, वहाँ नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम थेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो हो नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हु आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे brought the already to India. So India ka kitna very big. I have not seen everything. India itna lamba chauda hai, I was not here. I went to other countries. But I see somebody this and that and that. But how many countries have there and all have different language. Many language hai Bharat mein. Lekin unhone sab karke Hindu bataya. Aur Hindu kahan se? Hindu bahut dur se hai ye. Kya nahi? Hindu kahan ka kisko kehte hain batao? Ha. Hai? नहीं संस्कृत में तो है सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या कि इस साल में ऐसे आ गए इन लोगों ने मुसलमान आ गए खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस So, therefore, we know that everything that in my country, and where my country there, when I go to the airport, and then is everywhere. Yeah. So, I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara idhar se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here.
स्वामी जी है महेश्वरानंद गए, तो मैं महेश्वरानंद को मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो, लेकिन वो ही कर रहे हैं मेरे लिए। हाँ, पहले मैंने कराया, बट इस एंड आई टॉल दे बट इट नो आई हैव डन एंड वाट डू यू वाट विल डू एंड सो माई डिसाइपल्स दैट एवरी बर्न इन द होल कंट्रीज होल वर्ल्ड कंट्रीज की अब दे आर कम एंड मेड सो इनका गवर्नमेंट इंडिया में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है, तो वैसे ही करना चाहिए। और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इनको हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो, नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो, आप उसको बोला आपका, लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है। नहीं तो मैं अगर ये इतना तक नहीं नहीं मैं तो हम मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगे तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में। बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट। एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ऑनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर and here my was staying in my house and there was one very nice person in Rupavas mein aur wo thoda matlab theek nahi tha to dheere dheere chalte the but he was no very great standing very great wo mahaprabhu ji ke paas aaye the to wahan bitha diya ki baitho aur padhao to bab ji ke wo nahi the itna छोटा से ही सेम बाप जी महाप्रभु जी एंड वो आते थे देन घर पे आते थे फिर वो आते वो बैठते थे। तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपला हमारे रूपावास में रखा है। रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चब लगा हो गया वहाँ से भी जगह हैं। हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा। और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास यस माई नेम इज रूप

0: है। तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य ही का वो नाम दिया है, सबका नाम दिया कि किसका नाम है, कौन है, कि मैं मनुष्य हूँ बस। अब हम मनुष्य है तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ है, ये प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी का इतना बहुत गाँव देश है और देश में गाँव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान यहाँ इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके, लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसके इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्री दीप नारायण भगवान की
1: जय। श्री मारवानंद जी सदगुरु।

0: ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय, श्री माधवानंद जी की जय, गुरुदेवा की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माता पिता गुरुदेवा
0: की जय,
1: सत्य सनातन
0: धर्म की जय,
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: ओम शांति शांति शांति, हरिओम।
0: जय की जय।